अब तुम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तो कितना ब्यूटीफुल है। लुक ये मेरा अब तुम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादियों का

0: अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुआ।
1: जो भी रहा मेरे

मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी टांगें चल सकती हैं, मैं नाच सकता हूँ।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अहिले साँझको 7 बजे